0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदैव भरिलाई।
1: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज, आवाज हिंद को आवाज, यो हो रेडियो मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ट्ज।

0: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाक बन्द जीव दुखे को आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जड़ीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा
1: गुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड गुराही दान फोन नम्बर 0825162110 थप सम्पर्क का लागि हिमालय स्टोर बाल मंदिर अगाडि नीरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदै भरिलाई।
1: मध्य पश्चिम ट्रान्स चेक यति बेला दिउँसोको एक बजेको छ।

0: पांडव रामायण में राम र रावण होशियार महाभारत में कौरव र पांडव सबैले कहीं न कहीं नारीकी लागि युद्ध गरेका छन्।
1: साथै स्वर्गद्वारी चलचित्र मंदिर घोराई दांग में भव्य प्रदर्शन भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र बेहुली।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है, संग मरना है।
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।

0: सुरक्षित जीवन जीन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सदै भरिलाई।
1: मध्य पश्चिम ट्राङ्क चेक यति बेला बेलुकीको 5 बजेको छ।

राम राम सन्जे पाँच बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिग्राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। इण्डियन आयल कर्पोरेशन आईओसीसे पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्य बहर्कन अहिलेसम्म नेपाल आयल निगमसे खुद्रा बिक्री मूल्य भरि यथावत धर्ना निर्णय गराखल। भोटेको सिलड्डेमा अहिलेको भाडीको कारण सिर्जना हुइलको कठिन अवस्था ध्यानमा धैकन निगम संचालक समितिको निर्णय अनुसार साबिकको मूल्यमा जो कायम धर्गिलक हो। मध्य पूर्वमा चल्तिरहेक युद्धको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भरि पेट्रोलियम पदार्थको भावमा उतार चढ़ाव हुना करल बा। आईओसीसे प्राप्त पाचक खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोलियममा प्रति लिटर 12.40 रूपियाँ व डिजेलमा प्रति लिटर 4.68 रूपियाँ बहर्कन आरहल। तर पेट्रोल डिजेल तथा मटिटेलका मूल्य खुद्रा बिक्री मूल्य साबिकको सरह पाचक वर्गमा प्रति लिटर 197.50 रूपियाँ द्वासर वर्गमा 179 रूपियाँ व त्यासर वर्गमा 200 रूपियाँ जो कायम बा। पाचक वर्ग अनुसार चार आली विराटनगर जनकपुर अमलियागंज भलबारी नेपालगंज धनगढ़ी ओ बीरगंज द्वासर वर्गमा सुर्खेत ओ दाङ तथा त्यासर वर्गमा काठमाडौँ पोखरा ओ देपाल पर्थ खाना पकिना ग्यासको भाव भरि प्रति सिलिण्डर 2060 रूपियाँ अर्थात थर्गिलक निगम जना राखल। दाङको लमहीको नगरपालिकामा प्रहरीले एक नाल अवैध भरुवा बन्दुक बरामद गरिराखल। अवैध नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित अमलिया मरलक गायत्री सामुदायिक वनमस्य झाडी भित्र अवैध भरुवा बन्दुक लुकाकन धरलक कना विशेष सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय अमलियासे खड्गिलक प्रहरी टोलीसे एक नाल अवैध भरुवा बन्दुक बरामद करलक प्रहरी जना राखल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब परीक्षक डाक्टर हेमबहादुर केसीका अनुसार बन्नोमा झाडीमा व्यवहारिसे अवस्थामा नुकाकन धरको अवस्थामा उक्त बन्दुक नियन्त्रणमा लेखन घटनाबारे थप अनुसन्धान हुइतिरलक जानकारी दिएर समाजमा हुन विभिन्न आपराधिक क्रियाकलाप वा अवैध हतियार बरामद कलाक दाङक प्रहरीसे कुछ समयसे विशेष अभियान सञ्चालन गर्दिरहल्बा। प्रदेश लोक सेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य समक्ष आफ्नो सातौं वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिराख्ल। कायोगको अध्यक्ष हरिप्रसाद बस्वालसे मुख्यमन्त्री आचार्य हन आर्थिक वर्ष 2082-83 वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्लक प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचना सचिव शम्भू प्रसाद मरासिनीसे जानकारी दिइराख्ल। आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष 2082-83 विभिन्न सेवाका अन्तर्तह खुल्ला तथा समावेशी होर 863 ओ बढ़ुआ हो 1,164 पदकला का विज्ञापन आह्वान करगिलक प्रतिवेदन में उल्लेख बा। आयोग से आपन कार्य संपादन हन पारदर्शी ओ प्रविधि मैत्री बनाएकला अनलाइन दरखास्त प्रणाली संग अनलाइन भुक्तानी ओ एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लगायत का प्रविधि का प्रयोग करती आरलक जानकारी दिख। आयोग से संघीय निजामती सेवा एन तर्जुमा हुईल पास प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा कानूनमा दिगिलक दुविधा ओ दोहोरोपन हटाकन कानूनी एकरूपता कायम गर सुझाव दिइराख्ल। समावेशी समूह अन्तर्गत पिछड़ीकलक वर्ग ओ क्षेत्र सीमान्तकृत लैंगिक तथा युनिक अल्पसंख्यक ओ विपन्न खस आर्यक आरक्षण तथा सहुलियतको व्यवस्था कार्यान्वयन गर सम्बन्धित निकायसे संयोजो सूचना प्रकाशन कैकन आवश्यक परिचय पत्रको व्यवस्था गर फे आयोगका सुझाव राखल। ओ भोटकोशी लड्डेमा अहिलेको बाढीसे प्रभावित परिवार कला थारू कल्याणकारी सभा दाङ देउकुरी क्षेत्र नम्बर 100 सञ्चालन गर्लक एक घर एक किलो चामल दान अभियान से करिब 40,000 किलो चामल सहित भारी परिमाणमा खाद्यान्न संकलन हो रहल। बाढ़ी पीड़ित कलाकार राहत जुटना उद्देश्य से संचालन करगिलक अभियानमा 39,383 किलो 970 ग्राम चाउर संकलन हुइलक सभाको क्षेत्रीय सचिव एम बहादुर चौधरी जानकारी दिइराख्ल। उहाँको अनुसार चाउरसँग 1,324 किलो 580 ग्राम दाल 2,064 किलो न्वान
96.5 लिटर त्याल 298 किलो 500 ग्राम लसुन 202 किलो 820 ग्राम बेसार 839 किलो 100 ग्राम आलू 22 किलो 550 ग्राम खुर्सानी 35 किलो 550 ग्राम गहूँ ओ 40 किलो पिठा ओ 37 किलो कोक्मी समेत संकलन रहल उसतक 4 पेटी चाउचाउ ओ 4 पोकिया सोयाबीन कैकन संकलन करगिल्बा अभियानमा खाद्यान्नसँग 84,425 रूपियाँ नगद सहयोग प्राप्त हुइल रह उक्त रकम मध्ये 68,450 रूपियाँ राहत कोषमा जम्मा करगिलक सचिव चौधरी बटवारखल बाढ़ी पीड़ित कलाक राहत सामग्री जुटाएकला सभासे देवखरीको विभिन्न स्थानमा संकलन केन्द्र सञ्चालन करगिल रह स्थानीय बासिन्दासे आफ्नो क्षमता अनुसार चाउर दाल नुवान त्याल लगायत खाद्यान्न तथा नगद सहयोग गरल रह हुठा दाजु थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजाफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सक्ने बाटी अखसक खबर मसेज समाचार कक्षक सबको संग्रहसँग म शालिकराम चौधरी विदाहीटु रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: वाय नेट को बाई वन गिफ्ट वन फ्री अफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा फ्री इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि एक महीना फ्री इंटरनेट वाय नेट अब सब कनेक्टेड।
1: वरिष्ठ पाइल्स फिसर तथा फिस्टुला रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर शाह अब दाङ गुराईको दिव्य फार्मेसीमा।
2: आधुनिक लेजर प्रविधि द्वारा उपचार र बिना चिरफार उपचार
3: डाक्टर द्वारा दिइने सेवाहरू पाइल्स फिसर फिस्टुला र पाइलोनाइडल साइनस को आधुनिक लेजर प्रविधिबाट बिना चिरफार उपचार
4: बिना टाका प्रभावकारी उपचार
2: दिशा गर्दा दुख्ने रगत आउने मासु पलाएको घाउ भएको पिप बग्ने चिलाउने कब्जियत एवं सम्पूर्ण रोगको सफल उपचार तथा परामर्श
4: शरीरको कुनै पनि भागमा मासु पलाएको अनावश्यक तथा मुसा कोटी आधुनिक मेसिनद्वारा हटाइन्छ
2: शल्यक्रियाको डर बिना सुरक्षित उपचार र तुरुन्तै डिस्चार्ज
4: नोट फोनबाट पनि नाम दर्ता गराउन सकिनेछ
5: बिरामी जाँच हुने मिति यही असोज 16 गते शुक्रबार
1: दिव्य फार्मेसी कुराई 15 सडक विभाग रोड सम्पर्क फोन नम्बर 082-590-410 मोबाइल नम्बर 98478-28913 98478-26163 र 98095-12871।

0: 94.4 MHz में तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुनको अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल। लामो अनुसन्धान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटीको शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र ₹50 मा।
2: कुराहीको लागि आधिकारिक विक्रेता भूषाल स्टोर हस्पिटल रोड कुराही दान फोन नम्बर 082-585-2110। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मण्डी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसञ्चारदेखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छानामुनि।
4: वरिष्ठ हाट जोड्ने तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू:
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हाट जोड्ने सम्बन्धी अपरेशन सेवा।
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू:
7: वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा।
8: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा।
9: नशा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्मा द्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
10: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारी द्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा।
11: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसी द्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा।
12: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्य द्वारा भिडियो एक्सरे सेवा।
13: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई दाङ। फोन नम्बर 082-585-2118।

0: రంగం రెడ్డి మీరు ఎవరెస్ట్
1: लहदुर गजब का फरायो कोसेनी बेकरी र बीएन फूड ट्रक को फेसबुक पेज फॉलो लाइक शेयर गर्नुस् 50 कार्टुन पुरस्कार जित्नुस् ल गोजी वाला मोबाइल झिकी हाल्नुस् त अनि कोसेनी बेकरी र बीएन फूड को पेज फॉलो गर्नुस् पुरस्कार जित्नुस् भएन त मजा
0: संचालक नरेश कुमार श्रेष्ठ
2: रिवर्स ओसमोसिस तथा यूवी स्टेरिलाइज्ड एंड ओजनाइज्ड प्रविधिबाट प्रस्तुत राप्ती अञ्चलकै पहिलो ड्रिंकिंग वाटर
3: स्वर्गद्वारी ड्रिंकिंग वाटर
2: हाम्रा सेवाहरू
3: 1 लिटर र 20 लिटर जारको व्यवस्था
2: अर्डर अनुसार खाली बोतलको उत्पादन
3: 20 लिटर जारमा होम डेलिभरी सेवा
2: सम्पर्क स्वर्गद्वारी ड्रिंकिंग वाटर पुरानो बस पार्क प्रोप्राइटर धर्मेन्द्र केसी फोन नम्बर 082-5670-021 र होटल दाङगाई नजिक जीवन चौधरी मोबाइल नम्बर 98478-63-375
3: शुद्ध पानी पिउनुहोस् स्वस्थ जीवन जिउनुहोस्